0: California.
1: Extreme energy drink.
2: अनि तयो कागज केमे छिवा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबदि
3: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर बे अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई
2: अनि बैंगरी
3: बैंगरी
2: अ
3: सर चाहिँ तले लगपर्दि
2: समलपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेदिया बदेर ब्लक तयै विषय आफै न ब्याङ्क दिने जानकारी पिन पर्यम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी प्रज्ञा सचेत तल पर्यम
3: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगी न
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।